आश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत है सरकार दो आलम की। अनवार तजल्ली से दोनों जहां रोशन, क्या शम्मे रिसालत है सरकार दो आलम की। ऐ अर्ज़ मदीना काश आंखों में तुझे रख लूं, जन्नत है तू जन्नत है सरकार दो आलम की। मुर्दे ही न जी उठे, पत्थर भी पढ़े कलमा,

रामा बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाबे गफलत बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

की नींद मुझको सुला दी कि मैं सच काइंड ऑफ स्लीप प्रिस्क्रिप्शंस दैट ओबीडियंस टू अल्लाह तबारक व तआला एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन गेट्स मी पीसफुल स्नैगो इन द कबर. जागना हो अफलाक के साए तले फिर हशरत पड़ेगा खाक के साए तले. Negligence. Negligence is that hen from which so many different eggs come. When a person is negligent, he will go to all the wrong places, do all the wrong things. So the person has to be conscious of Allah Tabaraka wa Ta'ala's presence at all times. Slaughter that hen. When you slaughter the hen of ghaflat and negligence, then all those eggs too will disappear. They will not be able to lay any more eggs after that. جی کنکلوڈ. یا رحیم یا کریم یا